आत्मक शांति लई स्वर्गवासी ठाकुर सिंह प्रीतम सिंह जी बंगई वल्ला सुरेंद्र सिंह जी कला प्रसाद दिया देखा लई 1000 रुपया द्रवे विछड़ी हो आत्मावां नूं आप जी दे चरण कमला विच निवास बख्शना जन्म दिन दे खुशियां वजा सरदार चरण सिंह किशन सिंह जी पार्टनर वाले 1000 रुपया आदर कर दे दीर्घ आयु देह अरोगता बख्शनी

स्वर्गवासी नंद सिंह देवाकार गुलाबकार निर्मले इन्हां दे याद विच वल्लां सरदार इंदर सिंह उत्तमकार जी निर्मले सरदार सरबजीत सिंह हरप्रकाश सिंह निर्मले समूह परिवार वल्लां लंगरा लई एक

वेद रीत कहु तासु विपरीत कहु त्रिगुना अतीत कहु सर्गुण समेत हो कहु देवतान के दीवान में विराजमान कहु दानवान को गुमान मत देत हो कहु इंद्र राजा को मिला तो इंद्र पद भी सी कहु इंद्र पद भी छिपाए छीन लेत हो कहतु विचार अविचार को विचारत हो कहु ने जिनार पर नार के निकेत हो कहु वेद रीत कहु तासु विपरीत कहु त्रिगुना अतीत कहु सुरगुना समेत हो कहु शस्त्रधारी कहु विद्या के विचारी कहु मार्त आहारी कहु नार के निकेत हो कहु देववाणी कहु शारदा भवानी कहु मंगला मिड़ानी कहु श्याम कहु सेत हो कहु धर्मधामी कहु सर्वठारगामी कहु जति कहु कामी कहु देत कहु लेत हो कहु वेद रीत कहु तासु विपरीत कहु त्रिगुना अतीत कहु सुरगुना समेत हो कहु जटाधारी कहु कंटी धरे ब्रह्मचारी कहु जोग साधि कहु साधना करत हो कहु कान फारे कहु डंडी हुए पधारे कहु फूक फूक पावन को प्रतिपा धरत हो कहु सिपाही है क्या साधत सिलाहन को कहु छात्री हो क्या आर मारत मरत हो कहु भूम भार का उतारत हो महाराज कहु भाव भूतन की भावना भरत हो कहु गीत नाद के निदान को बतावत हो कहु नृत्यकारी चित्रकार के निधान हो कहु पयूक हो क्या पीबत पीवावत हो कहु मयूक ऊक कहु मदपान हो कहु महासूर हो क्या मारत मवासन को कहु महादेव देवतान के समान हो कहु महादीन कहु द्रव के अधीन कहु विद्या में प्रवीण कहु भूम कहु भान हो कहु अकलंक कहु मारत मयंक कहु पूर्ण प्रजंक कहु शुद्धता की सार हो कहु देव धर्म कहु साधना के हरम कहु कुत्सात कु कर्म कहु धर्म के प्रकार हो कहु पौन हारी कहु विद्या के विचारी कहु जोगी जाति ब्रह्मचारी नर कहु नार हो कहु छत्रधारी कहु छाला धरे छाल भारी कहु छकवारी कहु छाल के प्रकार हो कहु गीत के गवैया कहु बेन के बजया कहु नृत्य के नचैया कहु नार को आकार हो कहु वेद बानी कहु को की कहानी कहु राजा कहु रानी कहु नार के प्रकार हो कहु बेन के बजैया कहु धेन के चरैया कहु लाखन लवैया कहु सुंदर कुमार हो शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो के निर्दोखी निरंकार हो निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचिया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया की दो मानी महामान हो विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो कहु ब्रह्मवाद कहु विद्या को विखाद कहु नाद को ननाद कहु पूर्ण भगत हो कहु वेद रीत कहु विद्या की प्रतीत कहु नीत अनीत कहु ज्वाला सी जगात हो पूरा प्रताप कहु इकादि को जाप कहु ताप को अताप कहु जोग ते डिगात हो कहु बार देत कहु छा

श्रावक सुध समूह सिधान के देख योघर योग जति के सूर सुराधन सुध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग झरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप बलि बिद न्यावत शीश न जात विचारे एते भय तो कहा भय भूपता अंत का नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नंगारे गूंजता गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन कने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिना अंत का अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विषय है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमीन

सोध सिपाह दुरंत दुबासु साज सुना दुर जान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हलेन हलाएंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्रीपाता श्री भगवान कृपा बिना त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बडेबरी आर विचार है सार की धार बछिया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के

छपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराध भजांतर लोक राज करेंगे। कोट स्नान के जादिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विशन सचिपत अंत फसेजम फास भरेंगे। जेनर श्रीपत के प्रसह पग तेनर फेरना देह धरेंगे। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद क्या बैठ।

हाँ हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेक हरि अदोक हरि अद्वैक हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजांत्र हरि अमांत्र हरि सुतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभांड हरि अडांड हरि प्रचांड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि पजस्तु अंग भजस्तु अंग रटस्तु अंग

भूकमल हारिगज गदहा विभूत दारि गिद्वा मसान बास करुई करत है। कुगुमट बासि लग डोलता उदास मृग तरवर सदीव मोन साधी मरत है। बिंद के सदैया ताहि हेज की बडैया दैत बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कै तरत है। भूतवन चारी चित छवना सब दुदाधारी पावन के आहारी सौ भुजंग जानियत है। तृण के बछिया धन लोभ के तजिया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच के बडैया दैत बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी नाह ऐसा न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नाभ के उड़ैया सो चिरैया कह बखानिया। फाल के भुजैया ताहे बांदरी के जैया कह आदि सफिरैया ते तो भूत कह पछानिया। जल के तरिया को गंगेरी सी कहत जग आ के भचैया सोच कोर सम मानिया। सीरज सिवैया सूरज सिवैया ताहे कौल की बनाई दे चंद्रमा सिवैया का कवि कै पहचानिया। नारायण कच्छ मछ तिंदवा कहत सब कौल नाभ कौल जिह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजरा गोपाल सब अधेन चारी रिखी केस नाम के महंत लहियत है। माधव भवर अटीरु को कन्हैया नाम कंस को बधैया जाम दूत कहियत है। मूड़ रूड़ पीटा तना

सह तपस्य आद ब्रह्म से न वेद चारि सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक से उभय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्ण के त वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोनते मदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंश अवतार के ते काल बस भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गने न परत एते भूम ही ते हो क्या फेर भूम ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मानस महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ अभिमान भुज

शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में रहत, ब्रिज फूक फूक पाव भूम श्राम ग धरत है। पहना अनेक जुग एक ठार बास करे, काग और चेल देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन, भावना यकीन दीन कैसे कै तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगी या बैरागी बने, कब हूँ सन्यास भेष बन कै दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैल गावे बारी, कहूँ दंड धारी होय कै लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत

करता करेम सोई राज का रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानब। एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबो। देह राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पै अनेक को भमाओ है। देवता अदेव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश।

जैसे आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए क्या फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नाद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अब

का करत भछ कहते आछ वच हो पाछ उठ जाएंगे। कहते नाभ बीच आछ पाछ का करेंगे भछ कहत का प्रताच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहा थल कहा गगन के गौन कहा काल के बनाए सब।

रत कहते जल में डुबत कहते आग में जरत है। कहते गंग बासी कहते मदीना मका निवासी कहतक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कहते भूम में गड़त कहते सुअप चढ़त कहते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कहते जल में रहत कहते ज्ञान के विहीन जक जारी मरत है। शोध हर देवता विरोध हर दान बड़े बोध हर बोध का प्रबोध हर जापसी घस हर चंदन लगाए हर चुआचार पूज हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गाह हर गुर नाम नाय हर माड़ी माट लीप हर भीतन।

न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदावंग सदा सर्व सर्वत सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अक्षय आद अद्वै अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अवै निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग

प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वय अनाश अनतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनभूत तेज अनछिज गातकर्ता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जह सत्र मित्र नहीं जन्म।

नहीं चयन चित्र जह रंग रूप नहीं राग रैग जह जन्म जात नहीं भर्म भेख जह कर्म भरम नहीं जात पात नहीं नेह के नहीं पितृ मा जह नाम थाम नहीं वर्ग ब्या जह रोग शोक नहीं सत्र साध जह त्रासवाद नहीं देह ना जह आद अंत नहीं रूप रा जह रोग शोक नहीं जोग जुगा जह त्रास आस नहीं भूम भुगता जह काल ब्याल कट्यो न अंग आछा स्वरूप आख अभंग जह नेत नेत उचरंत बै जह अलग रूप कथत कते बा जह अलख रूप आसन अडोल जह अमित तेज आछा अतोल जह ध्यान काज मुन जन अनंता कई कलप जोग साधत दुरंता तन शीत घाम बरखा संत कई कलप एक आ

निम्रत शास्त्र उचिरंत वैद कई कोक काभ कथत कतेब कई अग्निहोत्र कई पवन आहार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भच नहीं तदप देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहु वेद रीत जग आद करम कहु अग्निहोत्र कहु तीरथ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई कर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई

योग धर्म कई सिमरत शास उचरत स्वकर्मा। निवली आद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखाना। कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या।

कहु गान गीत कहु करते शास सिमरित उचार कई भजत एक पग निराधारा कई नेह देह कई कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नि ताप कई जपत उर्ध लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पम प्रजंत नहीं तदपतास पायत न अंता कई कर्त कौट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरारा बिन भगत सकत नहीं परते पान बहु कर्त

जय जम्पोह जुगण जूह जुअंग भय कंपोह मेर पयाल भुअंग तप ताप सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद सरोव अभेद अभियान खंड अबूद अछेद अछिया अनकाल अपाल दयाल सुअंग जह ठटियंग मेर अकाज भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जह रचियंग देव अदेव बरंग सबके नेदेन जमीन जमा जह रचियंग सर्व मकीन मका जह राग न रूप न रेख रुखंग जह

कई कीट पतंग भुजंग नरंग रचरा अंडज जेत रच अंडज सेतज उत भुजंग किए देव अदेव सराध पिता अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जह तात न मात न भ्रासुतंग जह रोग न सोग न भोग भुअंग जह जंपह किन्नर जछ जुअंग नर नार न पुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भवभूत भविक भवान तुअंग जह अंडज से तज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पान प्रचंड बलि बन जास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवास शितंग रच रोज एकादश चंद व्रतंग दुत चंद दिने सह दीप दई जेह पावक पान प्रचंड मई जय खंड खंड प्रचंड के जय छात्र उपाय छंद के जय लोग चार दरबार के नर लोग रब के वस्ते वस्ते मन भूत अभूत अछूत मत मन भूत अभूत अछूत मत मन भूत अभूत अछूत मत मन भूत अभूत अछूत मत मन भूत अभूत जह राग न रंग न रेग रुखंग जह सोग न भोग न जोग तुमंग भोग भंजन गोग न आग सुरंग जह बंधन दैव जन दैव सरंग मंदत दैव गण किन्नर जाच भुजंग रचे गण चले मोती लाल सुचे मोती लाल भंज बाए गंज बतंग जह पाप न आन कपूर मतंग जह पाप न पाप मन खंड स्वरूप अंडांड प्रभा जय जनपद वेद अंडान स्वा जय वेद कवे पुराण सभा जय भूत अभूत न भेद धर्म सभा

राज छोपनाज छागंजाद देवा भंज भंज जानी दे भूत भूत है सदा जगनी राज मानिया है सदा देव देव है सदा भेव भेव देव है सदा सदा भेव भेव देव सर्व सर्व धर्म सर्व नाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा भंज भंज गंज जा सदेव सदा वृद्ध जा सदेव नूप रूप स्वरूप है अच्छे जते जते मानिया रूप देव सदेव सदा सदेव मानिया

चचरासुर मारण नरक निवारण पतत उदारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चार नरक निवार पतित उधारे मुंड मथे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आदि कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र तन दानव अर्दन बिड़ाल बदय सरदार बिबर खण दुर्जन धर खण अतुल अमर खण धर्म धुजे धूम्राज विदुंसन श्रोणत चुनसन सुम

आद सूरज सिवंत कई पलट सूर्य सिजदा कराय प्रभ एक रूप द्वाका लखाय अनछिज तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्वा अनास सब रोग सोक तेरा तुरु

अंजन विहीन अनभंजनाथ जल धल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नई भेद भरम, जय रंग रूप नई एक धरम, जय सत्र मित्र दो एक सार, अच्छा स्वरूप

छीर कैसे छीराबद्ध छाछ कैसे छत्रानेर छपाकार कैसे छब कालिंद्री के कुल के हंसनी सी सिहारो महिरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारा से पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरा से सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती से फूल के फटक से कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा से सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमासी हिमालय।

प्राण सखाई। हर कीर्त हमरी रहरा सुरहाव, हर जन के वड भाग वडेरे। जन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपता सह मिल संग।

किंचित वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंत उपाई ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सत बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैकूसा तिस पाछे बछरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

अनंतद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापह जपह बेनता तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेव डियावर ना कोई तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब कोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान।

मल सात संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भौ जल तरन के, जन्म व्यर्था जात रंग माया कह रहा। जप तप संयम धर्म ना कमाया।

इति भरंत भिन्न भिन्न तुहितेति तुमरा लखा न जाय पसार कह विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतभुज खान बहर रच दीनी काहू फूल राजा हुए बैठा काहू सुमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे असुधज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घरमो सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहीं उबारा।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने अर गावे दोख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आत ब्याज छ सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधी।

0: श्री साहिबा महाराजा रणजीत सिंह साहिबा महाराजा रणजीत सिंह
1: बोले।
0: साहिबा।

जीव निवाज अंतर जामी सतगुरु सचे पातशाह जी महाराज साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी के पावन पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबिचल नगर साहेब विखे पातशाह जून 1984 विच ऑपरेशन ब्लू स्टार नीला तारा दे तहत पातशाह मौके दी सरकार वल्लों कीते जुलम दा टाकरा करदे होए शहीदियां पाईयां सिंघा सिंघणियां दी शहादत नूं समर्पित पातशाह कीर्तन दरबार होया है। गुरद्वारा बोर्ड दे सहयोग नाल कीर्तन दरबार करवाया गया पातशाह सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत पुरजा पुरजा कटमरै कभू न छाडे खेत जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरे आओ इत मार्ग पैर धरी जय सिर दीजय कान न कीजय जी गरीब निवाज जिना जिना ने पातशाह धर्म दी रख्या लई शहादतां प्राप्त कीतियां पातशाह तिना दी शहादत नु समर्पित कीर्तन दरबार होया पातशाह पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विच प्रवान करनी बाणी दा महात्म दर आईया संगतां दे ताई बख्शना तिना शहीद सिंघा सिंघणियां दे ताई बख्शना तिना दे परिवारां दे ताई बख्शना पातशाह तिना शहीद परिवारां दे शीश ते मेहरा भरिया हथ रखना सदा ही आप जी ने पातशाह तिना परिवारां दे अंग संग सहाय रहना परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला रखनी जी महाराज जी गरीब निवाज इस वेले कीर्तन दरबार दे समाप्ति जी की अरदास से गुरमुख प्यारे मिल हो जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत का भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आज्ञा भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिले।